0: 1980s में ही ये बात कर दी थी कि हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं दोनों अलग नेशंस हैं, क्योंकि
1: जी
0: दोनों के रहन सहन का तरीका, दोनों के इबादत करने का तरीका, दोनों के बातचीत का तरीका, दोनों का ब्रॉट अप और दोनों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, जो
1: जी
0: कह है इसमें कोई दूसरी बात या दूसरी राय अभी तक भी नहीं है।
1: जी
0: तो वो उन्होंने उस टाइम पे बता दी थी कि यार ये मुस्लिम और हिंदू ये दोनों अलग नेशंस हैं, टू
1: जी
0: सेपरेट नेशंस हैं,
1: जी
0: इनको ब्रिटिश, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये कहते थे कि दोनों बेशक सेपरेट नेशंस हैं लेकिन दोनों एक जगह पर रह सकते हैं।
1: जी
0: तो उस टाइम पे उनकी उस बात पे किसी ने ना फोकस किया ना कोई उनकी उस सोच को लेके चला,
1: जी
0: लेकिन जब 90s में ये देखा गया कि मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं ने अपना जो जुल्म था, जुल्म की इंतहा कर दी थी, क्योंकि वो तो अपने 1880s में वो बात करके उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है,
1: जी
0: क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहते तो वो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते रहते, बताते रहते लोगों को या अवेक करते कि यार ये अलग नेशन है, क्योंकि उनको वो चीज़ नज़र आ गई थी।
1: जी
0: तो जब 19s में हिंदुओं का जुल्म बढ़ गया मुसलमानों के ऊपर,
1: जी
0: तो उस टाइम पे जो मुसलमानों के अपने राइट्स थे, उनके ह्यूमन राइट्स जो थे, वो भी दबने लग गए,
1: जी
0: क्योंकि वो उनको खुला रहने की इजाज़त नहीं थी, वो खुली इबादत नहीं कर सकते थे, वो कोई अपनी कुर्बानी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों का होता है कुर्बानी, वो कुर्बानी की इजाज़त नहीं देते थे। और उन्होंने एक अलग से जगह बना दी थी कि मुसलमान यहाँ पे रहेंगे, अगर वो उस एरिया से भी बाहर आते हैं तो उनको परमिशन नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड थे वो,
1: जी
0: क्योंकि उस टाइम पे रूलिंग पार्टी थी भी हिंदुओं की, कांग्रेस, और ब्रिटिशर्स जो भी बात करते थे, हालांकि उस एट द बैक ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की कि यार दोनों को साथ ले के चला जाए, दोनों के राइट्स देखे जाएं, ठीक है, और दोनों को अपने अपने हकूक मिलने भी चाहिए। उसकी बेस के ऊपर उन्होंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से
1: जी
0: रखे गए, और दोनों में इत्तेफाक हुआ। लेकिन आफ्टर दी कॉन्फ्रेंसेस मतलब ऑलवेज ये देखा गया कि यार जो कांग्रेस के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि यार कुछ इस तरह का हो,
1: मतलब पावर शेयरिंग जो
0: नहीं चाहते थे।
1: कॉम्प्रोमाइज़ेस थे वो फेल हो रहे थे।
0: जी बिल्कुल। तो फिर उस चीज़ को देख के एट दी एंड कायदे आज़म इस चीज़ के ऊपर हो गए कि यार अब मुसलमानों को अपना एक सेपरेट होमलैंड चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि आपको पता है कि इंसान एक हद तक किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है।
1: जी
0: तो जब किसी के ऊपर जुल्म होता रहे मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो कहता है यार बस दैट्स ऑल, इससे आगे मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो
1: जी
0: या फिर वो उसके रिएक्शन में कुछ कर देता है या वो जगह छोड़ देता है।
1: जी
0: तो कायदे आज़म अगर मतलब अगर उनकी ज़ात पे बात होती तो वो बर्दाश्त कर भी लेते या कुछ चेंजेस ले भी आते, लेकिन वो उस टाइम पे बात थी ऑल मुस्लिम्स की,
1: जी
0: तो वो उनका वो थॉट उस टाइम पे जो है ना वो वर्क किया उन्होंने। और जो कायदे आज़म की मैं कहता हूँ उस टाइम पे लेगेसी थी,
1: जी
0: इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे भी उस तरह की लेगेसी किसी भी लीडर में अभी तक भी है।
1: जी
0: जो उनका स्टाइल था, जो जो उनके बात करने का तरीका था, जो कन्वेंस करने का तरीका था,
1: जी
0: जिस तरह वो कॉन्फिडेंट थे,
1: जी
0: बहुत यार डिफरेंट लेवल किस्म के वो एक डिफरेंट लेवल पे थे उस टाइम पे एट द
1: जी
0: बैक ऑफ 19s में।
1: जी तो डिफरेंट हीरोज़ उस टाइम पे हमारे, मतलब जिनकी
0: जी
1: हम बात कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं। अलामा इकबाल देख लें आप, लियाकत अली खान हमारे पहले प्राइम
0: जी
1: मिनिस्टर थे, उसके बाद कायदे आज़म खुद पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे,
0: जी
1: उसके बाद और भी बहुत सारे नाम अगर हम देखें हिस्ट्री में तो हमारे सामने आते हैं। सरदार अब्दुल रब नश्तर थे, मतलब बहुत थे, अगर हम कोई लिस्ट बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो आप टाइम के साथ साथ درگزر کر دیتے ہو یا کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو اس

वेलकम बैक जी. एहतशाम थोड़ी सी हम बात कर लें स्ट्रगल की आफ्टर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के. क्या क्या स्ट्रगल्स हमें फेस करने को मिली और जो हमारे पेरेंट्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखी और कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनको हम भुला नहीं सके और कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो स्टिल हम उन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं. तो कुछ थोड़ा सा बताएं स्ट्रगल के बारे में.

0: जनाब, जब भी आप कहीं पे माइग्रेट करते हो तो जो पिछला आपका होमलैंड होता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: हमने एक सेपरेट होमलैंड तो ले लिया, लेकिन हमारे कई अपने अजीज़, कई अपने साथी, कई अपने दोस्त, कईयों की औलाद, कईयों के माँ बाप वहीं पे रह गए।
1: जी
0: जो यहाँ पे आए वो तो पता नहीं किस कंडीशन में आए, किस तरह आए, किस तरह बच बचा के आए
1: जी
0: और सर छुपा के आए। यहाँ पे आके उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सहा होगा,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ से जिस टाइम पे निकल रहे होंगे, जिस तरह आपने डिस्कस किया ब्रेक से पहले कि जो फर्स्ट ट्रेन आई थी उसमें सिर्फ एक जो ड्राइवर था ट्रेन का, सिर्फ वही जिंदा था। इससे बड़ी ज्यादती और जुल्म और क्या हो सकता है।
1: जी
0: तो आफ्टर दी सेपरेशन जब आप देखें कि यार कोई भी कंट्री बनता है तो उसका एक लीडर होता है जो उस कंट्री को लेके चलता है, क्योंकि जिसका विजन होता है कि मैंने अगर एक चीज़ अलग करवा दी है तो अब नेक्स्ट मेरा प्लान क्या है कि इसको कैसे लेके चलना है।
1: जी
0: हम पाकिस्तानियों के लिए तो जिस टाइम पे सेपरेट होमलैंड हमने ले लिया, आज़ाद हो गए, हम यहाँ पे आ गए, तो सबसे बड़ा जो हमें एक धचका लगा वो हमारा जो
1: जो
0: लीडर था
1: क्राइसिस आया।
0: कायदे
1: जी
0: आज़म, वो ही दुनिया फानी से चले गए।
1: जी
0: तो उनके बाद हमें ये नहीं पता था कि यार हमें लीड कौन करेगा। जब
1: जी
0: एक एक जो नेशन होती है उसका लीडर ही चला जाता है तो उसको उसको विजन उसका उसका ख़त्म हो जाता है।
1: जी
0: उसका मतलब ये होता है कि आप 100 ऑफ ईयर्स बैक चले गए हो,
1: जी
0: क्योंकि जब नया कोई लीडर आएगा, आप चुनोगे, नया लीडर आएगा, उसका विजन कुछ और होगा, वो चलेगा किसी और तरीके से,
1: उसको
0: ठीक है,
1: उसको समझने में टाइम लगेगा,
0: इम्प्लीमेंटेशन में
1: लोगों को उसका कॉन्सेप्ट लेने में टाइम लगेगा।
0: बहुत, मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जो उस टाइम पे हमारे पास नहीं था।
1: जी
0: तो मतलब मौत तो अल्लाह की तरफ से ही आती है, इसमें तो
1: डेफिनेटली
0: कोई शक नहीं है।
1: जी
0: आफ्टर दैट जब हमारा कंट्री बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं,
1: जी
0: क्योंकि जब कायदे आजम चले गए तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था कोई नहीं उस टाइम। तो हमने
1: जी
0: क्या किया, हमने जल्दबाजी में जो ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन था हमने वो अडॉप्ट कर लिया,
1: जी
0: क्योंकि हम तो एक मुस्लिम्स हैं, ठीक है। उस टाइम पे चाहिए क्या था, अगर हमारा लीडर होता तो वो क्या करता कि यार मुस्लिम्स के लिए जो बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन होता वो उस टाइम पे इम्प्लीमेंट बनाता और
1: जी
0: इम्प्लीमेंट करवाता।
1: जी
0: लेकिन जब वो नहीं था तो हमने जल्दबाजी में क्या किया, जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने अडॉप्ट कर लिया एज इट इज़,
1: जी
0: जो 1970s तक चलता रहा।
1: जी
0: और उसकी वजह से हम, मुझे फिर ये लगता है कि यार हम और पीछे चले गए, मतलब
1: जी
0: 100 ऑफ ईयर्स तो पहले चले गए लीडर्स की वजह से, फिर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उससे ओवर कम करने के लिए हम और पीछे चले गए।
1: जी
0: तो असल हमारा वजूद जो है ना 70s में आया। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
1: जी बिल्कुल एहतशाम, यही एक्चुअली तो मसला वहाँ पे स्टार्ट हो गया था जब कायदे आज़म की डेथ हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा अलील थे अपनी वफात से पहले, मतलब आखिरी कुछ अयाम में वो बहुत ज़्यादा अलील थे, उनको काफ़ी मसले मसाइल, इवन जो उनको बीमारी थी टीबी था उनको, कायदे आजम को, तो कायदे आजम का जो डॉक्टर था इवन के वो, मतलब ये नहीं था कि वो कोई मुस्लिम था, आई गेस वो कोई गोरा था या कोई हिंदू था, मतलब कोई आउट ऑफ कास्ट था, उसको भी कायदे आजम ने मना किया कि तुमने
0: बाहर किसी को
1: बाहर
0: नहीं,
1: किसी को नहीं बताना कि मैं किसी
0: डेफिनेटली
1: बीमारी में।
0: यस,
1: तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ये क्राइसिस आए, बस टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जल्दी से कवर अप करते हैं कि अब एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए।
0: सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के साथ मोहब्बे वतन होने की बहुत ज़रूरत है,
1: जी
0: जो कि हम तो हैं, क्योंकि हम अगर हम इस टाइम पे न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अपने मुल्क से हम प्यार नहीं करते। हाँ
1: जी
0: ये है कि वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, जो वहाँ पे कंडीशंस चल रही हैं, हम उसके मुताबिक नहीं चल सकते। आप क्या कहते हैं?
1: जी बिल्कुल, यही असल में तो यही मसला है ना कि हम, मतलब माइग्रेट, हमने भी माइग्रेट किया सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने कंट्री के लिए या अपनी फैमिली के लिए जो पाकिस्तान में है इस टाइम, उनके लिए कुछ बेहतर कर
0: बेहतर कर
1: सकें।
0: सकें,
1: तो वो चीज़ यहीं पे आके, मतलब वो कॉन्सेप्ट यही हम बिल्ड करते हैं कि यार हम आ तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को स्ट्रांग करें,
0: यस,
1: और पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो ही
0: तो
1: हम
0: हम
1: स्ट्रांग।
0: स्ट्रांग होंगे डेफिनेटली।
1: तो बस डेफिनेटली यही है, और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है होगा वो होगा स्मॉल बिजनेसेस से
0: हाँ वो एक
1: रिलेटेड,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक
1: वो एक
0: है,
1: इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम
0: वो भी
1: अपने
0: हमने जो हमने लास्ट एपिसोड्स में कहा

0: था कि अपनी जो ऑडियंस है वो हमें कुछ सजेस्ट करे।
1: जी, तो उसी उसी में से हमने एक टॉपिक ये चूज किया कि स्मॉल बिजनेसेस को थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए, थोड़ा सा बताया जाए पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं स्मॉल बिजनेसेस के
0: होपफुली,
1: लिए। तो
0: या होप फॉर द बेस्ट।
1: जी, तो
0: मिलते
1: वाइंड अप
0: हैं,
1: करते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।
0: यू हैव बिन लिसनिंग टू इंडस्ट्री ओटागो ऑन OARFM। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एज वी कनेक्ट पाकिस्तान एंड ओटागो, टू लैंड्स वन वॉइस।
1: लिसन बैक ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, oar.org.nz। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज एंड काकिते आनो।
2: Being adopted from overseas and living with a disability in New Zealand. I'm Becky, a Russian adoptee living with a disability, and I've got a podcast for you. Join me on Spilling the Reality on OARFM Youth Zone for some fun chats with a hint of reality. Spilling the Reality podcasts are on Spotify, Apple Podcasts, and oar.org.nz.
3: Come one, come all, as we march boldly into the Almi Alternative on Otago Access Radio. I'm Harry Almi. Let's uncover neglected subjects and pose unasked questions. Whether they be politics and culture, niche or not, we'll have it all. The Almi Alternative is on every second Thursday at 7 p.m. or listen anytime on oar.org.nz, Spotify and Apple Podcasts. That's the Almi Alternative on Otago Access Radio.